0: सरस्वती नदी के नाम से तो सब गोटे सुनने हेबे, परंतु सरस्वती नदी के तट से लकर आई के जे गंडकी नदी छथिन केना राजा निमिष जनक धैर्य गार्गी याज्ञवल्क शास्त्रार्थ से विद्यापतिक पदावली तक आ घरक कोहबर से विश्वकला दीर्घा में उपस्थित मधुबनी पेंटिंग। आई हम हजारों वर्ष के यात्रा के किछ प्रमुख पड़ाव बुझबाक प्रयास करब। हमरा संगे किछ गेस्ट सेहो छथि और किछ गेस्ट जुड़ा वाला छथि, तो जना जना गेस्ट सब जुड़ना शुरू हेता हम अपने सबके संगे उनका प्रस्तुत केने जाए। तो आओ सबसे पहले स्वागत करी जे स्टूडियो में गेस्ट उपस्थित छथि, श्री नवनीत झा जी और संध्या झा जी।
1: नमस्कार। नमस्कार सब गोटा के। धन्यवाद शिशिर जी और आई बहुत महत्वपूर्ण हमारे सबके आई हो वाला छे सेशन, क्योंकि हम सब मिथिला के गौरव मिथिला के इतिहास के बारे में बात करबे। तो दोसर गेस्ट का हम रिक्वेस्ट करब जे कनी परिचय दियो।
2: प्रणाम सब श्रोताओं को, मेरा नाम संध्या है और आज हम मिथिला की धरती के बारे में, मिथिला की हिस्ट्री, गौरव, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे।
0: हमरा संगे दूटा और गेस्ट जोड़ा वाला छे, जनाओ जोड़ता अपने सब के हम अपने सब के उनका सामने उनका उपस्थित करब। तो यदि हम अपने सब के कहे कि एक क्षण के लिए अपने सब आँख बंद करूँ और ई कल्पना करूँ जो बहुत प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर बसल एकटा समुदाय ओकर नेतृत्व करे छथि विदेह माथव और हुनकर कुल पुरोहित छथिन गौतम। शतपथ ब्राह्मण में अइ समुदाय के उल्लेख छ। शतपथ ब्राह्मण की होइत अछि तऽ ई एकटा वेद के पाठ छ। अइ समुदाय के उल्लेख छ जाहिमे राजा अपन मुख में वैश्वानर अग्नि धारण करने चला, अर्थात राजा ततेक यशस्वी तेजस्वी छला है जे साक्षात अग्नि के स्वरूप छला है। पुरोहित के मंत्र में घृत के उल्लेख होइत अछि, वो जे मंत्र होइ छै ओइसँ अग्नि प्रज्वलित होइ छै। तब ई अइ मिथिला के इतिहास के प्रारंभ होइ छै सरस्वती नदी के तट सँ, ओहि समुदाय सँ जकर कुल पुरोहित छलखिन गौतम। कालांतर में ई भेलै जे सरस्वती नदी विलुप्त भेनाइ शुरू भऽ गेलखिन और ओहि समुदाय के लेल ई बड़ा कष्टकारी बात भेलै। तो गौतम ऋषि अपन राजा विदेघ माथव के संगे मिलकर एक यज्ञ के आयोजन के लिए थे, और क्योंकि आप नदी नहीं चलखिन है तो आवश्यकता पड़े एक एहन एहन स्थान के जता जता ई समुदाय समुदाय से विकसित भ सके, जीवन जीवित भ सके। तो एक दोसर नदी छली है सदा नीरा, जे आई के गंडकी नदी छथिन। ओहि सदा नीरा के तट पर ई सब गेलखिन और ओत जे छे ई यज्ञ केलखिन गौतम ऋषि और माथव महाराज। माथव महाराज के मुख से जे मुख में क्या कि अग्नि चलिन है और वो अग्नि के स्वरूप चलखिन है, तब दिशा दिखावा के लेल ओ अग्नि जे छे से एक धारा में एक दिशा में बढ़ी गेलखिन। तो ई कथा अपने सबके जारी रहत और ऐसा आगा हम सब फिर बढ़ब। तबे तक मिथिला के एहन गीत जे घर घर में गायल जाइए कोनो विशिष्ट प्रोग्राम से पहिने अइ गीत के गेनाय अइ गीत के भेनाय अवश्यम भावी छे। ये विद्यापतिक गीत छे, आओ सब गोटे मिलकर सुनै छी अइ गीत के।

0: बहुत सुंदर गीत और ई गीत के ई महत्व है जो आइयो मिथिला के घर घर में ई गीत गायल जाए है गुनगुनायल जाए है। ऐसा पहने की आगा बढ़ी अहाँ सब के लिए एक विशेष सूचना है जे क्यों अ प्रोग्राम से जुड़ा चाहे छी ओ 0426-399-461 पर संपर्क कर सके छी। कोनो तरह के मैसेज कॉल यदि करा चाहे तो 0426-399-461 पर कॉल कर सके छी अथवा मैसेज भेज सके छी। और एक और महत्वपूर्ण सूचना जे आवे वाला अक्टूबर में 1719 अक्टूबर मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज कर रहा जाए भव्य दुर्गा पूजा के और मिथिला महोत्सव के अपने सबके स्वागत है। ई ओपन टू ऑल छे सब गोटे अवे जाए जाओ और मिथिला मैथिली और मैथिल के विषय में जने जाए जाओ। ई अहाँ सबके अवसर प्रदान करत यदि केओ एमे पार्टिसिपेट करे चाहे छी कोनो तरीका से अहाँ सबके स्वागत है। तो आओ आब समय आबि गेल अछि जे अपन आओ दूटा नया गेस्ट सब भेट गेल कयल जाए जुड़ चुकल छथि हमरा सब संगे श्री अविनाश कुमार जी और श्रीमती ममता जी। अविनाश जी अहाँ के स्वागत है।
1: धन्यवाद सुषेंद्र जी।
0: ममता जी अहाँ के स्वागत है।
2: धन्यवाद सुषेंद्र जी।
0: तो केहन बुझा रहा है जे ई मिथिला के एक टा चैनल ऑस्ट्रेलिया में छे अपन मिथिला से दूर की बुझा में आबि रहा है जे केहन की कोन तरह के अहाँ के भावना है ऐ चीज के लक।
1: सबसे पहले तो सब श्रोतागण के नमस्कार प्रणाम। देखियो मिथिला के भाव का और अगर मिथिला के चर्चा नहीं छे तो मतलब कि अहाँ बेजान छी।
0: वाह बहुत उत्तम।
1: हमें कोनो दम नहीं छे एहन टाइप के बात भ जाए छे तो अपना आप में ही गर्व के बात तो छेबे छे। प्लस एमे इहो छे कि जे एक आधार छे हमर सबके जीवन छे जीवन के तरीका छे मिथिला और मैथिल के बात होना है और ऐ सब के साकार भ रहल छे हमर सबके जो ऑर्गेनाइजेशन छे मिथिला कल्चरल सोसाइटी और एमे फंक्शन होय वाला छे दुर्गा पूजा हम सब जे कर रहल छिए जे सिडनी में भ रहल छे और ये अपने आप में एक बहुत बड़का बात छे।
0: वाह ये बहुत एक ऐतिहासिक कदम है मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया के। अहाँ सबके साधुवाद अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना के लेल। एक मिनट में ममता जी के अगर अहाँ अपने कह सकिए जे आवे वाला समय में कौन तरह से देखे छे जो ऑस्ट्रेलिया में मिथिला कल्चरल सोसाइटी या मैथिल सबके ये एक मंच भेटलन है ओकर कौन प्रकार से हम सब यूज कर पाए या उपयोग कर पाए।
2: धन्यवाद सुषेंद्र जी बहुत नीक क्वेश्चन। ई आई आई ऑस्ट्रेलिया देश में रहा वाला हर मैथिल के मन में जरूर एक बेर अवित हेतै कि जे आगा की हम तो बहुत देखलहुँ बहुत सीखलहुँ हमर पूर्वज बहुत सिखेलथि लेकिन आब जखन हम अतः छी हम अपना लेल तो जरूर जे होइया से प्रैक्टिस करै छी या फॉलो कऽ लै छी लेकिन बाद में जे आवे वाला हमर जनरेशन हैत हुनका सबके ई अपन संस्कृति के केना पासन करब ओहि के लेल जे ई मिथिला कल्चरल सोसाइटी बनाएल गेल छै ओहि मे और जते प्रयास कयल जा रहल छै जे भी तरीका से जेना कि दुर्गा पूजा भेल और दुर्गा पूजा रिलेटेड बहुत सारा इवेंट भ रहल छै ओहि सब के थ्रू एकटा सब देखायल जेतै सुनायल जेतै इनफैक्ट सबके शामिल कऽ कऽ हर बच्चा के बुजुर्ग के सब गोटा के एक तरह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देल जेतै और देल जा रहल छै।
0: हां सब
2: चलित रहतै।
0: जी जी अपने सब आवा वाला जनरेशन के बारे में तक सोच रहल छे अपन भाषा संस्कृति कला के विषय में तक सोच रहल छे ई मात्र कल्पना मात्र से हमर जे हृदय से गदगद भ रहल है। अहाँ सब वास्तव में बहुत बहुत नम्र प्रयास कर रहल छी और ए प्रयास में अहाँ सबके सफलता भेटा या माँ भगवती से कामना है। तो चलू अपन चर्चा के हम सब आगा बढ़ाबी। तो आई चर्चा पे छी हम सब मिथिला के इतिहास। तो मिथिला के इतिहास शुरू होय छे सरस्वती नदी के तट से और गंडकी नदी के तट पर। जहाँ सरस्वती नदी विलुप्त भ गेलखिन तो गंडकी नदी के तट पर गौतम ऋषि और हुनकर महाराज माथव ओतय आबिकऽ यज्ञ केलखिन। और ओ यज्ञ में जे छै से एकटा एकटा अग्निपुंज निकलले जे अग्निपुंज से ई प्रार्थना कयल गेलै जे हमरा सबके सही रास्ता देखाओ, क्योंकि अब सरस्वती नदी तो विलुप्त भ गेल छथि तो हम सब कतय रही, कतय ई समुदाय के विकास हेतै, कतय ई समुदाय जे छै से जीवित रहतै। तो एहन जगह पर जाकर, क्योंकि ओहि समय में जे सम्पूर्ण भूभाग छलैया, खास कऽ जे सदानीरा जे गंडकी के नाम पहिने छलैया, ओहि नदी के तट पर तट तक समुद्र से तुरंत तुरंत निकलल रहे, तो पूरा जे जे जगह रहे से भिजल रहे। तो हिनका सबके एकटा ओ जे पुंज रहे जे अग्निपुंज रहे से रास्ता देखेलकन एकटा स्थान के जे हिमालय से नीचा छै और गंगा से ऊपर छै, ओहि स्थान के देखेलखिन। तो ओहि स्थान पर माथव महाराज अपन राजपुरोहित गौतम ऋषि के संगे, और गौतम ऋषि के विषय में अगर अपने सब जानत हेबे तो छटा फिलॉसफी छे भारत में, छटा दर्शन शास्त्र छे, ओहिमे से एकटा दर्शन शास्त्र गौतम ऋषि के छे। तो एक दर्शन शास्त्र पर कहीं और बात करब हम, लेकिन क्योंकि हमरा ई बतेनाय आवश्यक है जे गौतम ऋषि के छथिन, हुनकर की स्टेटस छन भारतीय दर्शन में। तो अइ भूभाग के कहल गेलै मिथिला। अब ओकर नाम मिथिला केना पड़लै ओहि के पाछा सो एकटा कहानी छै। आगा बढ़ से पहिने एकटा गीत सुन लेल जाय, जे गीत हमरा बुझाइए जे इहो गीत ओतबे महत्वपूर्ण छै जतेक पछिला वाला छलैया।

0: सुबह है सुबह कोनो मंगल कार्य से पहिने ई गीत अवश्यम भावी छे। उपनयन होए, विवाह होए, मुड़न होए, ओइसे पहिने, क्याकि बचपन में हम कई बेर ई गीत सुन चुकल छी तो हमरा पता अछि ई गीत के कतेक महत्व छे। तो आओ आगा बढ़ल जाए, जना कहि रहल छलहुँ हैं जे यदि अपने सब जुड़ा चाहे छी और कॉल करा चाहे छी, कोनो तरह के मैसेज भेजे चाहे छी, व्हाट्सएप करा चाहे छी, तो नंबर है 0426-399-461। तो कह रहा है जे सदा नीरा तट पर या गंडकी के तट पर यज्ञ भेले, और यज्ञ से जे अग्निपुंज उत्पन्न भेले से देखेलखिन जे हिमालय से दक्षिण और गंगा से उत्तर एक भूभाग छे, वही भूभाग पर हुनका रह के स्थान देल गेलन। ओहिमे कालांतर में एक महाराज भेलखिन जिनका नाम रहलन निमि। ओहि निमि के महाराज के यज्ञ करवावे के रहन, तो गेलखिन वशिष्ठ ऋषि ओहिठमा, और वशिष्ठ ऋषि ओहि समय में इंद्रलोक में यज्ञ करवा रहल रहथिन। तो निमि महाराज के वशिष्ठ जी कहलखिन जे अपने वेट करियौ और हम जाबे तक इंद्रदेव के ओहिठमा यज्ञ करवा लेब, ओकरा बाद हम अपने के यज्ञ करवाएब। जाय पर निमि महाराज किछु नहि बजलखिन, ओहि चीज के वशिष्ठ जी मौन स्वीकृत बुझि गेलखिन। तो जहन वापस एलखिन तो सालक साल बीतल जा रहल रहे, निमि वृद्ध भेल जा रहल रहथि, तो हुनकर जे छै से कनिक पेशेंस जवाब दऽ गेलनि और दोसर ऋषि सबके बजा कऽ ओ ओतय जे छै से यज्ञ के अपन शुरुआत कऽ देलकै, यज्ञ के प्रारंभ कऽ देलखिन। बीच में इंद्रदेव इंद्रलोक में जहन समाप्त भेलै यज्ञ, तो वशिष्ठ जी एलखिन निमिक लग आ देखलखिन जे यज्ञ चलि रहल छै, तऽ हुनका बड़ा क्षोभ भेलनि जे हम कहने छलियै जे हम करवायब, और अपन अहाँ कहलखिन निमि के जे अहाँ जे छै से अहाँ अपन वचन भंग केलहुँ हैं, जबकि यथार्थी रहे जे निमि वचन देबे नहि केलखिन, ओ मौन भऽ गेल रहथिन। एहिसँ क्रोध भऽ कऽ वशिष्ठ जी कहलखिन जे आइ के बाद अहाँ अपन शरीर के अहाँ के शरीर नहि रहत, अहाँ रहब लेकिन अहाँ के शरीर नहि रहत, अर्थात अहाँ विदेह भऽ जायब। ताहिसँ ओ जे विदेह भेलखिन, और कियाकि निमि महाराज जे रहथिन हुनकर कोनो गलती नहि रहन, तो ओहो एहि चीजसँ क्षुब्ध भऽ कऽ वशिष्ठ जी के श्राप देलखिन जे आइसँ अहूँ के जे अवस्था अछि से बिना कोनो शरीर के रहत। ठीक छै, नेक्स्ट बर्थ में वशिष्ठ जी फिर के फिर जन्म भेलनि। वशिष्ठ जी के जन्म भेलनि एकटा ऋषि के अथी पर। अविनाश जी अहाँ किछु बाजय चाहै छियै
1: एहिके बारे में हम विस्तार से बताएब, लेकिन ओहिसँ पहले हम दूटा बात कहब। सबसे पहले कि जे मिथिला के इतिहास छै ई ओतबे पुरान छै जते कि भारत, जते कि अयोध्या, और ओतबे इम्पोर्टेंट छै जते कि अयोध्या के राम और वहाँ के जे राजधानी छै ओकर कहानी जुड़ल छै। कैले कि दुनू के जे जोड़ छै ना, अगर हम पीछा जबै, बहुते पहले जबै, फोर फादर जते भेलखिन तो एगो जगह आयत जहाँ पे राम के भी उहे पूर्वज छलखिन और जनक जी के भी पूर्वज उहे छलखिन। यानी कहे के मतलब दुनू जे वंशज छै ओ सूर्य वंश छै और दुनू इक्ष्वाकु वंश से आयल छै, और इक्ष्वाकु के भेलखिन ओ भेलखिन मनु जी के
0: जी
1: पौत्र भेलखिन, नहीं सो मनु जी के पुत्र भेलखिन, और उनकर पुत्र भेलखिन इक्ष्वाकु जी के पुत्र भेलखिन निमि। और जेकर निमि के अहाँ चर्चा कऽ रहल छलिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी छै। अ कहानी में होइ छै कि जे अहाँ बतलिए कि निमि जी के यज्ञ के लेल प्लान केलखिन कि जे हमरा बड़का यज्ञ करे के छै, बहुत हजार साल के यज्ञ करे के छै। उनके कुलगुरु छलखिन वशिष्ठ, जे सेम कुलगुरु छथिन वहाँ
0: अयोध्या के
1: श्री राम के भी छै।
0: बहुत इंटरेस्टिंग बात छै।
1: हाँ, तो हम दुनू के साथ साथ में कम्पेयर कऽ लऽ कऽ चलै छी, तो ओहिमे सुने में अच्छा लागत। तऽ एहन भेलै कि कहलखिन कि जे अहाँ हमर कुलगुरु छी और हमर यज्ञ करू, लेकिन ओहि समय में ओ भगवान इंद्र के यज्ञ करवा रहल छलथिन। तो ओहि समय में मौन सहमति के रूप में कह देलखिन इशारा में
0: ठीक
1: आ जाएंगे या अल कम देर एना कह कहलखिन, लेकिन समय बितले और इंतजार बहुत दिन के भौ गेले और मुहूर्त बीतल जाए छले तो ऊ की केलखिन जे गौतम ऋषि के यहाँ चर्चा के लिए इससे पहले
0: जी, जी,
1: उनके थ्रू ही
0: यज्ञ
1: करवा ले यज्ञ तब हो गए मतलब कि कंटिन्यू हो गए लेकिन आप आगले अहम के बात गुस्सा के बात ऐ दुनू में अब ऐ में की भेले कि वशिष्ठ जी कुलगुरु होकर उनका श्राप दे दिलखिन कि जे ऐसे अहा कि जे शरीर हा इस शरीर खत्म भ जाए अहा विदेह भ जाए। निमि जी के आबि गेले गुस्सा तो आब गुस्सा में की केलखिन उहो उल्टा कके श्राप देलकी जे सेम टू यू सेम टू यू मतलब कि अहू विदेह बन जाए अहू के शरीर नहीं रहत तो यानी कि दुनू आदमी के शरीर खत्म भ गेले दुनू आदमी मर गेलखिन तो आब तो दुनू के कहानी बढ़ गई कि जे अब केना चलते तो बहुत बड़ा विषय बन गए कि जे केना लायल जाए तो ऐ में दुनू के अलग अलग कहानी बनले पहला चर्चा करे छी वशिष्ठ जी के तो वशिष्ठ जी बहुते दिन उनते बिना शरीर के रहलखिन तो एक समय में भगवान वरुण देव और मित्रदेव वो एगो काइंड ऑफ कि बहुत ही कॉमन नहीं छे अपना सबके लिए मित्रदेव कहना है कहले कि हम सब ओकर ज्यादा चर्चा और पूजा पाठ नहीं करे छी लेकिन मित्रदेव एगो देव भेलखिन जे कि मित्रता के लेल जानल जाय छथिन
0: मित्रा वरुण
1: दोनों के साथ
0: के संगे संगे चले छथिन
1: बिल्कुल तो ओही समय उनके संयोग से ही उनके साथ से ही उनके थ्रू ही ऋषि वशिष्ठ का जन्म हुआ और जिसके कारण उनका नाम मैत्री वरुणी हो गया
0: वाह बहुत बढ़िया।
1: इस प्रकार से तो ऋषि वशिष्ठ जी को शरीर मिल गया और फिर से वो पूरे वंश के कुलगुरु बन गए क्योंकि सेम वंशज है जो यहाँ इक्ष्वाकु जी हैं निमि जी हैं उनके साथ पैरेलल में जो अयोध्या में चलेगा जो वंशज चलेगा उनके भी वो गुरु होंगे। अब बात करते हैं इधर निमि जी के लिए तो निमि जी क्या हुआ वो तो बहुत स्वाभिमानी थे मिथिला के लोग होते भी हैं तो क्या हुआ उनके भी जो ऋषिगण थे उन्होंने किसी तरह जोर के मथ करके एक नया जीवन दान करने की कोशिश किए और बोले कि हम आपके लिए एक शरीर बना देंगे आप भी इस शरीर में आइए लेकिन वो कहल कि नहीं
0: अच्छा
1: बिल्कुल मना कर दिलखिन निमि जी कल की नहीं हम नहीं रहेंगे लेकिन सब आई बात से प्रसन्न होकर देवता सब कलकिन के वरदान मांगो तो कलके कि जे देखियो हम शरीर तो नहीं धारण करब लेकिन हमर इच्छा छे कि जे हम जे हमर वंश छे मिथिला के धरती मिथिला के व्यवहार मिथिला के संस्कृति एकर सक हम देख सके
0: की बात छे वाह
1: और ओय के लिए उपाय ढूंढ के कलके ठीक छे अहां के शरीर नहीं मिलत लेकिन आप अहां हर एक शरीर में वास कर सकलिए और हर एक आदमी के पलक पर जाकर
0: निमिष जो है जे निमिष हम सब पलक झपकबे छी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ई बहुत सुंदर जानकारी है श्रोतागण अपने सब के लेल जे अपने सब जे पलक झपकबे छी त हमरा सब संगे महाराज निमि जे छेद से वास करे छै
1: बिल्कुल तो इहे दुनू जे कहानी छै निमि वहीं से निमि और निमिष और उनकर जे शरीर खत्म भ गेले ना तो उन्हीं के जोड़ तोड़ के मथि के एगो नया शरीर क्रिएट कलके और उनके अंश छले निमि जी के और वहीं से मिथी ओकर नाम मिले मिथी माने मथ मथ का
0: किया कि उनका मथल गेले त मथ मथला के बाद अगर नहीं जे के जने थे मथनाई की छे त चरणिंग उनकर जे जे पार्थिव शरीर रहन ओकरा चरण कहल गेले और चरण क जे किछ निकलले ओकरा मिथी कहल गेले आ वह जे छे से हुन वह फिर महाराज बनलके उनका नाम भेलन महाराज मिथी
1: बिल्कुल बिल्कुल और वही से जे वहां के जे धरती बनले वहां की जे जगह बनले मिथिला
0: वाह उनका नाम भेले मिथिला और मिथिला कुमारी के वही वही परंपरा में ओगा बढ़ कर ओगा चल कर उनकर वंशज के रूप में विदेह महाराज भेलखिन। अच्छा एक आर कन्फ्यूजन छे अविनाश जी जे अगर पर किछ प्रकाश डाल पेबे अपने कि बहुत लोग सब से हमरा भेंट भेला जे कहे छथिन जे जनक जे छे से टाइटल छे जनक मात्र केवल सीता जी के पिताजी के नाम नहीं छे तो ऐके विषय में किछ की आइडिया है अहाँ के
1: हाँ बिल्कुल सही, जनक जे छे ने वहाँ के कहले कि मिथिला जे धरती बन ले बुझलिए ना, तो एक बस एहन नहीं राज बन ले जे में बस सिर्फ लोग रहे छे।
0: हाँ।
1: वहाँ पर एहन व्यवस्था कल गए कि जे बहुत ही ज़्यादा विद्वान जे होते, जे बहुत ही समझदार होते, बहुत ही ज़्यादा हरेक भौतिकवादी चीज़ों से उठ कर जे अपन राज काज करते, ओकरे सबके ई टाइटल भेटते। तो वो जनक जे भेलखिन वो उनकर टाइटल भेले, और वहाँ के जत्ते लोक सब भेलखिन वो जनकवासी भेलखिन, और उनके पुत्र जे भेलखिन उन जानकी भेलखिन।
0: उनको तो तक पहुँचा हूँ, इससे पहले हमारा पास एक और प्रश्न है अहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर ढंग से एकरा विश्लेषण कर रहा छी यार, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुझा रहा है हमरा जे महाराज जनक जे भेलखिन से भेलखिन जे सीताजी के पिताजी रहथिन ओ जनक जी रहथिन, लेकिन जहन अहाँ इतिहास देखे छे तो एकटा समय एकटा कालखंड एहन अबै छे जाहि में अष्टावक्र नाम के योगी जे छथिन से अबै छथिन हुनका जनक महाराज के घर के अथी में राजमहल में, तो ओ जे कथा छे से कि ई सीताजी के माताजी के सीताजी के जे पिताजी रहथिन राजा जनक हुनकर दरबार में अबै छथिन कि ओहिसँ पहिने कोनो महाराज के दरबार में आयल रहथिन, एहि के विषय में किछु जानकारी अछि अपने के पास?
1: हाँ, हमरा ख्याल से तऽ ओ जे अष्टावक्र जी एलखिन तऽ ओ जनक जी के दरबार में एलखिन, और ओहो अष्टावक्र जी अयला एलखिन कि जे हुनकर पिताजी के कैद कऽ लेने छलै, कहले कि वहाँ जे कहली न कि एक योग्यता और शिक्षा एक बस कमाई के जरिया नहीं छलै, एक मेन स्ट्रीम छलै वहाँ पर। वहाँ पर शास्त्रार्थ के बहुत बड़ा विधान छलै, और बहुत एक बेर शास्त्रार्थ जे जीत लेलके उनका तो बहुत सारा धन और गाय सम्मान सब तो मिलवे करे छलै, प्लस अगर गलती हार गेली तो एक तरह से सजा भी मिले छलै।
0: तो ई शास्त्रार्थ जे छै से बहुत हाल तक ही चले छलै है, जाहिमे धौत परम्परा पतनधोत परम्परा ई सब बाद में अयलै जहन महाराज दरभंगा के शासन छलन है, ऐसा विषय में सोम से बात करब, क्योंकि ये पूरा एक जननाइ बहुत आवश्यक है श्रोतागण के लिए, क्योंकि मिथिला के अ तरह से हम सब नहीं देखलिए है। मिथिला के मात्र हम सब माता जानकी के नाम से जने छे, महाराज जनक महाराज विदेह शास्त्रार्थ परम्परा ऐसा के विषय में हम सब नहीं जनलिए है, तो ऐसा के विषय में सोम सब धीरे धीरे जाने का प्रयास करब।
1: तह दुआरे हम सब जे है ना सब जे कोशिश कर रहल छिए कि सब जान सकिए
0: जी,
1: मिथिला जनक तक ही रुके के नहीं छे, ओय के आगे भी मतलब कि पहले भी जाने के छे कि विधि के छलखिन मिथि के छलखिन, फिर ओय के बाद ओसे पहले जे छलखिन किन एक छवाकू केना एते फेमस छलखिन और केना जुड़ल छथिन, प्लस वहाँ के जे संस्कृति वहाँ के जे नॉलेज वाला जे परम्परा छै ओकरा सबके भी बारे में जारी रखे के कोशिश करे छै। और अहाँ सबके श्रोतागण से भी हमर एगो हम्बल रिक्वेस्ट रहत ए बीच में कि अहाँ सब 17, 18, और 19 अक्टूबर के मिथिला रूप में हम सब जे दुर्गा पूजा कर रहल छिए ओय के लेल जुड़ब, और एहि पर आगे भी चर्चा होतै।
0: सब श्रोतागण के लिए बहुत एकटा अभूतपूर्व अहाँ सबके लेल अपॉर्चुनिटी है, जे समय एहि चीज से जुड़ू, मिथिला के कनिक सपोर्ट करियो, मिथिला के विषय में बुझियो, मिथिला केना छै की छै, कतेक महान सभ्यता छै, कतेक महान संस्कृति रहल छै, कतेक महान भाषा छै जे कालांतर में जे देवनागरी के सीढ़ी पर चढ़ कर अपन जे तिरहुत लिपि छै तकरा बिसरि देल गेले, एहि सबके विषय में जानक के प्रयास करियो, तिरहुत लिपि के जानक के प्रयास करियो, मधुबनी आर्ट के जानक के प्रयास करियो, संस्कृति के जानक के प्रयास करियो। ओहि क्रम में अविनाश जी अगर कनिक आगा चलल जाए तो एहिमे अगर बात कयल जाए जे सीता माता के जन्म, तो सीता माता के जन्म एकटा अद्वितीय घटना छै, ओहि विषय में यदि किछु अपने अगर बाजि सकिए तो ममता जी अगर अहाँ से हम पूछी जे सीता माता के जन्म भेलनि अथी में तो ओहि के विषय में अपन के की जानकारी छै, की जानकारी अहाँ श्रोतागण सब संगे साझा करय चाहै छियै?
2: बहुत नीक। तो सीता माता जी के जन्म के बारे में अगर बात कैल जाए तो ई बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक छै, बहुत पावन छन, बहुते पुण्य प्रताप के देन मानल जाय छै। ई एकटा बहुत ही अभूतपूर्व काल्पनीय घटना के तरह देखल जा सकल है कि कहानी एहन कहल जाय छै कि जे जनक जी जे बहुत ही विद्वान रहथिन, ओ हुनका मानल जाय छनि कि जे हुनका गुरु के द्वारा अष्टावक्र जी के द्वारा हुनका आत्मज्ञान देल गेल रहनि। ओ आफ्टर आत्मज्ञान ओ राज करैत रहथिन तो हुनका और भौतिक चीजों से कोनो लगाव नहीं रहनि, किछु नहि रहनि, लेकिन तैयो राज करथिन, बहुत नीक राज काज चलैत रहे। लेकिन ओहि बीच में बात एहन भेलै कि जे एक बहुत बड़ा सूखा पड़ि गेलनि हुनका राज्य में, जे कि हुनका प्रजा के लेल बहुत ही दुखदायी रहलनि, अन्न के बहुत कमी भऽ गेलनि, जाहिके लेल यज्ञ कयल गेलनि तऽ राजपुरोहित और ज्ञाता सब हुनका एडवाइस कयलखिन कि जे अहाँ अगर अपने से राजा अगर अपने से जाकर हल चलेथिन खेत में तो ओहि से बारिश भऽ सकलै है, इंद्रदेव प्रसन्न हेथिन, बारिश हेतै जाहिके बाद से फसल उगतै। तऽ ई सुझाव के बेस पर राजा गेलखिन और हल चलेलखिन जे कि अखनो मिथिला के सीतामढ़ी एरिया में पड़े छै। जतय ओ जखन ओ हल चलेलखिन अपने हाथों से तखन हुनका हल के नोक पर एकटा किछ अटकलनि जाहिमे से हुनका जखन ओकर खुदाई कयल गेलै तऽ ओहिमे से एकटा बक्सा निकललै, जे बक्सा में बहुत ही दिव्य प्रकाश रहै और ओहि बक्सा के जब खोलल गेलै तो एकटा कहल जाय कि जे माता लक्ष्मी स्वरूप एकटा कन्या रहथिन और ओ कन्या के और ने माता सीता रहथिन।
0: वाह, तो अपने जे कहलिए क्षमा चाहे छी, कनिक ई मौसम बदल रहल छै, लेकिन ई बहुत जबरदस्त अहाँ एकटा जानकारी देलिए जे सीताजी कियाकि हल्के शीतसँ ओहि चीजके प्रादुर्भाव भेलै तैँ सीता माताके नाम सीता राखल गेलै। बहुत बढ़िया, बहुत नीक।
2: आओर दोसर नाम हुनकर भूमिजा भी कहल जाइ छै कियाकि ओ भूमिसँ प्रकट भेलखिन। हुनकर जन्म जे एकटा नेचुरल प्रोसेस छै ओहिसँ नहि भेल छनि, ओ भूमिसँ प्रकट भेल छथिन, तैँ दुआरे हुनका भूमिजा भी कहल जाइ छै और माता सीता मैथिली भी कहाइ छथिन, तऽ हुनका अनेक नाम छनि। अहिके साथ माता सीता जखन माता सीता के जन्म के बाद फिर हुनका राज परिवार में तीनटा और पुत्री के जन्म भेलनि, जाहिके वजह से माता सीता चारि बहिन भेलखिन और आगा जाकर ओ राज्य बहुत ही सम्पन्न भेलनि, बहुत फसल भेलनि, बहुत ही ज्यादा सबकिछु अयलनि, कियाकि माता सीता स्वयं लक्ष्मी रूप में अयलखिन, तऽ राज्य बहुत ही सुख सम्पदा से परिपूर्ण भऽ गेलै।
0: तऽ जहिना माता सीता के प्रादुर्भाव सँ मिथिला सम्पन्न भऽ गेल, तहिना कोनो मैथिलानी अपन परिवार के सुखिया सम्पन्न करै छथिन। ई विषय एहन छै जे अहाँके इमोशनल सेहो कऽ देत, ई बहुत भावुक विषय छै, एहिपर एक दिन चर्चा हेतै। मैथिलानी के जे अथी छनि अपन अपन परिवार के सजावा में सवार में जे ड्यूटी होइ छनि, कोन तरह सँ ई पछिला कई हजारों साल सँ मिथिला के जे महिला सब छथिन, जाहिमे किछु नाम तऽ काफी फेमस छै, ओहिके भी समय सेहो बात करब हमसब ओहिके बाद, लेकिन एखन एकटा ब्रेक लै छी और फेर चलै छी। ब्रेक के मतलब हम एकटा गाना अहाँ सबके सुना दै छी और फेर ई जानकारी जे छै सिलसिला जे छै से जारी रहतै।

0: फिर से स्वागत है अपने सबके और अहाँ सबके जे हम सब आई जे हम सबके टॉपिक है ओहि विषय में बात कर रहा छी ओ छै मिथिला के इतिहास और हमरा संगे बहुत विशिष्ट गेस्ट छथि श्री अविनाश कुमार जी और ममता कुमारी जी और दूटा आर गेस्ट छथि नवनीत झा और संध्या झा सबसे हम सब बातचीत करते रहब तो फिर सलाह चले इनका इससे पहले कि आगा बढ़ी यदि एकटा क्विज हमरा सब हमरा पास है आयकर विजेता के जे छै से भेटत बहुत विशिष्ट पुरस्कार आवा वाला दुर्गा पूजा और मिथिला महोत्सव में तो प्रश्न ये अहाँ सब यदि सावधान छी अपन पेन पेपर उठा लिया सावधान छी तो महाराज मिथि के पूर्व नाम की छलन है महाराज मिथि के पूर्व नाम की छलन है जे विजेता छी हुनका सबके भेटत एकटा डांडिया के टिकट 18 तारीख शाम में 5 बजे से 8 बजे मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रहा है डांडिया नाइट्स ओहि में एकटा टिकट अपने सबके भेटत तो चलू ए बातचीत के आगा बढ़ाबे छी अविनाश जी तो अहाँ कहलिए जे दुनू गोटे एक दोसर के श्राप दे देलखिन तो केना अहाँ बुझे छी चीज के केना देखे छी जे आई क्या कि आइयो के समय में लोग सब ततेक अहंकार अभिमान सब भरल छथि जे एकटा के बाद दोसर के नहीं बर्दाश्त होइ छै तो की इहो जे कथा छै इहो ओही चीज के दर्शबैया कि एकर किछु और किछु गूढ़ एमे ज्ञान छुपल छै
1: बिल्कुल एमे बहुत बड़का ज्ञान छुपल छै कि देखियो अहाँ चाहे कोई भी आदमी कतबो बड़का भऽ सकलैए कतबो ज्ञानी कतबो महान लेकिन ओहिमे शालीनता नहि छै पेशेंस नहि छै और सब सही तरीका से एकोमोडेट करे के क्षमता नहि छै तऽ मतलब कि सब खराब छै और एकर डायरेक्ट एग्जाम्पल छै और तैं दुआरे आगे चल के भी एहन भेलै कि मिथिला के सब लोग के बात में एते मिठास कि कोई की कहू लेकिन
0: लेकिन तो सत्य छै के मिथिला भाषा ततेक मीठ छै यहाँ ककरो सब क्रोधित छी या ककरो से खिसियालो छी तैयो बुझा जाए अरे अहाँ प्यार से बात कर रहल छी
1: बिल्कुल
0: हमर माता जी आइ तक हमरा कहियो तू कहि कने बात कलखिन तुम कहि कने बात कलखिन जेना हिंदी में तुम होइ छै हमरा सब अहीं कहि के बात करै छै मतलब आप कहि के बात करै छै
1: बिल्कुल ई तो बहुत ही बड़का अहाँ टॉपिक छोड़ देलिए कैले कि एते मीठ भाषा छै ना कि गालियो मीठ लगै छै और तैं दुआरे वहाँ पर जे भगवान लिए राम छथिन राम जी छलखिन उनका गाली से स्वागत होइ छै
0: अरे वाह
1: भगवान भोलेनाथ के आइयो एते गाली वहाँ देल जाइ छै कि की कहू और गाली गाली नहीं छै वहाँ भक्ति के एक तरीका छै वहाँ पर
0: जी
1: उनकर जे सच्चाई छै ओकर जे कोनो बात छै उनकर देखाबे के तरीका छै और गाली में यहाँ पर बनावटी चीज नहीं छै बिल्कुल एक अलग प्रोस्पेक्टिव छै
0: जी
1: जे सच्चाई से सामना करबै छै तऽ और अही के साथ हमेशा एक ग्राउंडेड लैंग्वेज छै जे में सबके जोड़ के रखे छै तऽ अहाँ के सवाल के जवाब दै छी जे ओ घटना भेलै जे में वशिष्ठ जी श्राप दऽ देलखिन निमि के और निमि श्राप दऽ देलखिन उनका कि जे दुनू बिना शरीर के भऽ जाएब तै के कॉन्सिक्वेंस में ई भेलै कि दुनू के आदमी दुनू के शरीर नहीं भेटलै फेर ओ भटके लगलखिन दुनू भटकते रह गेलखिन और वशिष्ठ जी के तो नया शरीर मिल गेले वरुण मैत्री के थ्रू
0: जी
1: लेकिन निमिष जी आई की आइयो भले ही अहाँ मिथिला के छी या नहीं छी लेकिन अहाँ के अगर पलक झपके हा तो ओ निमि महाराज अहाँ के आँख पर विराज छथिन और अहाँ सब आदमी मैथिल भ गेले
0: अरे बस जे को सुन रहल छी अहाँ सब गोटे मैथिल छी कोनो भाषा में बात करी लेकिन पलक तो सब गोटे झपके छी अहाँ सब आ यदि पलक झपके छी मतलब अहाँ सब गोटे मैथिल छी
1: बिल्कुल
0: तो यहाँ सब गोटे के प्रोग्राम है ए पर ए प्रोग्राम के कनी आगा बढ़ के सपोर्ट करियो तो ई बहुत बढ़िया अहाँ पर जानकारी दिलिए अविनाश जी तो निमि महाराज के कारण जे छै से जे पलक झपके छै ओकर नाम निमिष होइ छै और निमिष जे छै से समय के सबसे छोट यूनिट छे।
1: जी,
0: घंटा मिनट सेकेंड से बहुत पहने, लाखों साल पहने, हजारों साल पहने, लाखों साल पहने समय के यूनिट छले या निमिश।
2: आई जकरा लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या ब्लिंक ऑफ एन आई कहे छथिन, वो मिथिला में निमिश के नाम पे महाराज निमी, ऋषि निमी स्थापित किया दलकिन रहे बहुत पहले।
0: तो मिथिला एतेक पुरान है और मिथिला एतेक महान है। जी, तो ये बहुत बहुत बढ़िया है। आज चर्चा के हम सब और जारी रखब, तो जहाँ हम सब बात करे जहाँ हम सब आगे बढ़े और माता सीता के जन्म हो, तो कथा है जो श्री राम अयोध्या के में हुनकर जन्म भेलन और चल के मिथिला गेलखिन। तो चल के किया मिथिला गेलखिन और मिथिला से किया एतेक सिग्निफिकेंस, मिथिला से भगवान राम किया जुड़ल छथिन, जतबा महत्व श्री राम के देल जाय छन, जतबा महत्व श्री राम के छन ओतबा महत्व माता जानकी के सेहो छन। तो कोनो प्रकार से जे छै से मिथिला अयोध्या से कम नहीं है। तो और कनी जाने छे ममता जी, अहाँ यदि हम पूछी जे श्री राम भगवान के जन्म भेलन अयोध्या में और मिथिला में केना जाकर हुनकर विवाह भेलन, की कौन घटनाक्रम एहन भेले जाय के चलते हुनका मिथिला आवय पड़लन, हुनकर विवाह भेलन।
3: तो बात एहन छै कि भगवान राम जे स्वयं विश्व विधाता छथिन, जखन अवतरित भेलखिन अयोध्या में तो वो एकटा प्रोसेस एकटा पर्पस लऽ कऽ एलखिन और ओही के हुनका लीला के जे घटनाक्रम रहे ओहिमे ई कहल जाए कि इंक्लूडेड रहे कि जे हुनका मिथिला आवय के छै। ओकर रीजन, मेन रीजन ई बनल रहे कि जखन अपन शिक्षा पूरा कऽ कऽ भगवान राम वापस अयोध्या गेलखिन, ओहिके बाद ऋषि विश्वामित्र एलखिन राज्य में और राजा दशरथ से कहलखिन कि हमरा अपन यज्ञ पूरा करऽ के अइ, जाहि के लेल हमरा यज्ञ में बहुत ज्यादा बाधा आबि रहल यऽ, बहुत सारा बाधक सब, बहुत सारा राक्षस सब आबि कऽ हमरा यज्ञ नहि पूरा करऽ दैए, जाहिके वजह से हमरा यज्ञ रक्षक चाही, अहाँ अपन दुनू पुत्र सुपुत्र दिया दू राम और लक्ष्मण जे हमरा यज्ञ रक्षा करथिन और हम अपन यज्ञ पूरा करब। एहिके लेल दशरथ जी मानि गेलखिन और राम और लक्ष्मण गेलखिन विश्वामित्र जी के साथ हुनकर यज्ञ रक्षा करऽ के लेल। तऽ एही ओही घटनाक्रममे भेलन कि जे एकटा राक्षसी तारका के बध भेलन, जे कि एक के बाण में मारि देलखिन, जे बहुत बड़ा बड़ा सूर वीर और सब मतलब डरैत रहथिन, नहि मारि पेने रहथिन, तऽ ओ भेल तारका बध के नाम से प्रसंग छै।
0: तारका बध कतऽ भेल छै, मिथिला में भेल छै कि मिथिला से पहिने भेल छै?
3: ओ मिथिला से पहिले भेल छै। तखन ओ एकटा मानि सकै छी कि जे बॉर्डर पर भेल छै,
0: जे आइ काल्हि के जे बक्सर छै,
3: हाँ,
0: ओहि एरिया के कहल जाइत रहै पहिने, एकटा खास किछु नाम रहै और ओहि एरिया में जे छै से राक्षस सबके बहुत आतंक रहै, ताड़का या आतंकी सबके सरदार नहीं रहते।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मानल जाए छल कि राक्षस कुल में, और बहुत ज्यादा आतंक फैला कर रखने रहथिन, इतने बड़का आतंक रहे कि जे विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र जी के मतलब अपन थर्ड आई से देखा पड़लन कि जे के मार सकलन है। तो ओके बाद वो पद यात्रा जखन विश्वामित्र जी के अथी एलन इन्विटेशन कहल जाए, आमंत्रण एलन जनकपुर से ओहि राज्य में जो उत्सव रहे ओहिमे भागीदारी बन के लिए, और उत्सव रहे माता जी के स्वयंवर, तो जे के लिए हुन अपना संगे दोनों शिष्य के लेने गेलखिन राम और लक्ष्मण दोनों के, जे बनलन पदयात्रा अयोध्या से।
0: एहि टॉपिक पर हमर सबके दोसर अगला एपिसोड जारी रहते, अगला बेर हम सब सेहो एहि विषय में बात करब, क्योंकि मिथिला के इतिहास बहुत महान छै, बहुत चीज एहन छै जे अपने सबके बुझनाय आवश्यक छै। तो ई हमर सब गेस्ट जे छै से बनल रहता, तो अगला बेर हम सब फिर भेंट करे छी, लेकिन अहाँ सबके कियाकि समय के अभाव भऽ रहल है, अहाँ सबके छोड़ल नहि जा रहल छी हम एकटा बहुत सुंदर एकटा मिथिला के गीत सँ, सुनियौ आ एकर आनंद लिय।
2: मलत कुरुष।

0: Radio 2098.5 FM Community Program
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM।
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं रंजना रमन रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं. आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के आज की प्रमुख खबरें. आज यानी 6 सितंबर 2026 रविवार, युगाद 5128, विक्रम संवत 2083, भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है. सबसे पहले सुनते हैं भारत की खबरें. एयर इंडिया फ्लाइट में एक्सेप्शनली रेयर तकनीकी विफलता. एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट में एक साथ तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए, जिसे विशेषज्ञ बेहद दुर्लभ घटना बता रहे हैं. सौभाग्य से विमान सुरक्षित उतारा गया, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद एयर इंडिया ने संबंधित पायलट को हटा दिया. भारत की जीडीपी ग्रोथ उम्मीदों से बेहतर. भारत की ताजा जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट ने वैश्विक आर्थिक दबावों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन दिखाया है. यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में रही. इसरो ने EOS-05 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया. भारत ने अपना अब तक का सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा. यह उपग्रह मौसम, आपदा प्रबंधन और भू निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. दिल्ली में भारी बारिश और फ्लाइट डायवर्जन. दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और तूफान के कारण कई उड़ानें डायवर्ट करनी पड़ी और IMD ने रेड अलर्ट जारी किया. इससे हवाई यातायात और शहर के सामान्य जीवन पर असर पड़ा है. नेपाल में बाढ़ भारत के लिए चेतावनी. नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर विशेषज्ञों ने चेताया कि इसका असर भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और नदियों पर भी पड़ सकता है. FBI वांटेड फ्रॉडस्टर की पंजाब में गिरफ्तारी. जालंधर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो अमेरिका में $6 लाख की धोखाधड़ी के मामले में FBI द्वारा वांटेड था. सोनिया गांधी की आत्मकथा अब हार्पर कॉलिंस प्रकाशित करेगा. पेंगुइन द्वारा संपादकीय मतभेदों के चलते पीछे हटने के बाद अब हार्पर कॉलिंस इंडिया सोनिया गांधी की आत्मकथा 10 नवम्बर को प्रकाशित करेगा. जानते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की खबरें. नेपाल तिब्बत बाढ़ में लापता ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की खोज तेज. नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद 43 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लापता बताए जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई रेस्क्यू टीम नेपाल पहुंच चुकी है और खोज अभियान तेज किया गया है. यह खबर पूरे देश में चिंता और चर्चा का विषय बनी हुई है. बाथला ग्रुप का वित्तीय संकट, सिडनी हाउसिंग मार्केट पर असर. सिडनी की बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी बाथला ग्रुप गंभीर वित्तीय संकट में है. अगर कंपनी को तुरंत फंडिंग नहीं मिली तो इसे लिक्विडेशन में जाना पड़ सकता है. इससे सिडनी के हाउसिंग मार्केट में अस्थिरता वित्तीय संकट में है. अगर कंपनी को तुरंत फंडिंग नहीं मिली तो इसे लिक्विडेशन में जाना पड़ सकता है. इससे सिडनी के हाउसिंग मार्केट में

0: इससे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हुई है और विश्लेषक इसे पार्टी की बढ़ती पकड़ के संकेत के रूप में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में एंटी बॉय पाठ्यक्रम पर बहस। नेशनल्स नेता मैट कैनवन ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाया जा रहा कंसेंट एजुकेशन लड़कों को गलत दिशा में ला रहा है। इस बयान ने शिक्षा नीति, सोशल मीडिया एल्गोरिदम और युवा व्यवहार पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। कॉरपोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट में 100 मिलियन डॉलर का घोटाला, शेयर 80% गिरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ट्रैवल सर्विस कंपनी कॉरपोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट के खिलाफ बड़े वित्तीय घोटाले की जांच चल रही है। खबर सामने आते ही कंपनी के शेयर में 80% से अधिक की गिरावट आई। यह मामला कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आइए अब जानते हैं दुनिया की कुछ खबरें। नेपाल हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों का चमत्कारिक बचाव। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर टनल में कई लोग फंस गए थे। 9 दिनों बाद 2 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया, जिसे मानवता और साहस की बड़ी जीत बताया जा रहा है। यह घटना वैश्विक मीडिया में लगातार सुर्खियों में है। ईरान पर अमेरिका का दबाव बढ़ा, पिकेक्स माउंटेन पर संभावित हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संकेत देते हैं कि अमेरिका जल्द ही ईरान के पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाने जा रहा है। यह बयान मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र है। रूस का यूक्रेन सुरक्षा मुख्यालय पर ड्रोन हमला। कीव में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU मुख्यालय पर ड्रोन हमला किया, जिससे संघर्ष और तेज हो गया। यह हमला यूरोप और अमेरिका में सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ब्रिटेन में गिनेल फराज की पार्टी में बड़ा घोटाला। रिफॉर्म यूके पार्टी के शीर्ष अधिकारियों को विदेशी फंडिंग से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद निलंबित कर दिया गया है। इससे ब्रिटेन की राजनीति में हलचल मच गई है और पार्टी की छवि पर बड़ा असर पड़ा है। रोमानिया में एंड्रयू टेंट पर नाबालिगों की तस्करी का आरोप। रोमानियाई अभियोजकों ने एंड्रयू टेंट पर नाबालिगों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अभियोग दायर किया है। यह मामला सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों के बीच व्यापक चर्चा में है। मैक्सिको में 17 टन मेथ की ऐतिहासिक बरामदगी। मैक्सिको की सुरक्षा एजेंसी ने सिनालोआ में 3 गुप्त लैब से 17 टन मेथामफेटामाइन बरामद की है। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी में से एक है और वैश्विक एंटी ड्रग एजेंसियों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इंडोनेशिया में जंगल की आग। सिंगापुर से 4 गुना क्षेत्रफल जितना इलाका जला। इंडोनेशिया में लगी भीषण जंगल के आग ने विशाल क्षेत्र को प्रभावित किया है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे का संकेत मान रहे हैं। यह खबर पर्यावरण और एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख चर्चा का विषय है। इसी के साथ आज के समाचार यहाँ समाप्त होते हैं। सुनते रहिए दर्पण रेडियो। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 MHz पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, शैलजा जी और आशिमा जी। आप सभी का हमारे रेडियो प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नेपाल त्रासदी के बारे में। नेपाल जितने त्रासदी इतनी भयंकर रही कि वहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि वहाँ पर बाकी लोग जो मिसिंग हैं वो भी मिल जाएं, और हमारी श्रद्धांजलि उन लोगों को जिनको सदगति प्राप्त हुई है। तो हम आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ लाए हैं। शैलजा जी आज के कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं
2: जी,
1: उनसे हम मिलवाएंगे
2: बिल्कुल।
1: और इसके अलावा हमारे एक रंजना जी ने एक वार्ता भेजी है और सरिता जी ने भी वार्ता भेजी है, तो हम उसके बारे में तो बात करेंगे। और हम आज फादर्स डे है
2: जी।
1: सभी फादर्स को, सभी पापा लोगों को हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आपका दिन बहुत ही सुंदर बीतेगा अपने बच्चों के साथ। तो हम ये भी चाहते हैं कि यदि आप अपने पापा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं रेडियो पर ऑनलाइन, तो हमें फ़ोन कीजिएगा। नंबर है 04133859776। लेकिन आप फ़ोन करने से जो हमारा भजन का

0: कार्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद करिएगा। पापा से संबंधित हम आज के गीत भी रखे हैं और इसके अलावा हमारी जो गेस्ट हैं वो खास गेस्ट हैं, बहुत सारा सोशल काम कर रहे हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते जाएंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। आशा है कि आप हमारे कार्यक्रम में सहयोग देकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
1: अश्वता, एक बहुत सुंदर कविता है ओम व्यास की लिखी हुई, वो आपको सुनाएंगे पिताजी के बारे में।
0: तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का विचार।
2: नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है आज का विचार। आज के विचार की प्रेरणा मैंने श्री कृष्ण के जीवन से ली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन उलझ जाए तो उसे प्रेम, धैर्य और सही कर्म से साधो, यही जीवन का सच्चा योग है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन, मन को स्थिर रखकर सही निर्णय लेना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। उन्होंने युद्ध भूमि में भी अर्जुन को अहिंसा नहीं बल्कि धर्म के लिए आवश्यक कर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने गोकुल में प्रेम सिखाया, मथुरा में साहस, द्वारका में नेतृत्व और कुरुक्षेत्र में ज्ञान। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो अपने भीतर के भय, क्रोध और भ्रम को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। धन्यवाद।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और सांस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomkare.org.au। धन्यवाद
1: दोस्तों, समय है अब हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मिलवाने का। शैलजा जी, आप गेस्ट से मिलवाइए।
2: सुपर राव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, किसी भी समुदाय के समुचित व संगठित विकास के लिए समाज के कुछ दिग्गज निस्वार्थ समाज सेवक सूत्रधार होते हैं, जिनका योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और ये आवश्यक भी है। और आजकल और भी इसकी आवश्यकता बढ़ गई है जब हम विदेश में रहते हैं, विशेषकर विदेश प्रवास के पहले वर्ष में। तो हम आज आपको ऐसे ही प्रभावशाली दिग्गज सूत्रधार से परिचित करा रहे हैं, जिन्होंने एक दशक पूर्व भारत ही नहीं अन्य देशों से आए प्रवासियों की अनेक चुनौतियों में हाथ बटाने का निश्चय किया था। श्रोताओं, मुझे आश्चर्य होता है कि वह आपको भी होगा कि इस क्षेत्र में सुब्बाजी वेरिगोंडा राव ने अपने अथक प्रयासों से विशेषज्ञ उपलब्ध किए हैं हर विषय में, हर क्षेत्र में। तो हम आपका परिचय आज आपका करा रहे हैं श्री सुब्बा राव वेरिगोंडा जी से, जिनकी जो पहुंच है वो इतनी विस्तृत है कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है सिडनी में और पूरे न्यू साउथ वेल्स में जहां की उनकी पहुंच ना हो। तो सुब्बा राव जी, आप अपने विषय में कुछ बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पर हैं और किसने आपको इतना प्रेरित किया है इस समाज सेवा के लिए जिसमें आपने पूरे अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है।
3: डॉक्टर शैल चतुर्वेदी जी, मुझे बेहद बहुत खुशी है आज आपने हमें यहाँ इनवाइट किया दर्पण रेडियो कार्यक्रम में। सब श्रोताओं को सबसे पहले हमारे इंडियन सपोर्ट सेंटर की तरफ से नमस्कार एंड हैप्पी फादर्स डे टू एवरीबॉडी। मेरा जो सिडनी आना हुआ 1989 में हुआ है
2: जी।
3: उससे पहले काफ़ी साल इंडिया में हमने काम किया
2: जी,
3: 1971 से लेके एटॉमिक एनर्जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फिर MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। ये करने के बाद
1: थोड़ा सा माइक्रोफोन के पास आ जाएं।
3: 7 साल कंप्यूटर कंपनी में काम करे हमने, फिर मलेशिया सिंगापुर में 4-5 साल रह के ऑस्ट्रेलिया में 1989 में आए। तब से हमारा फंडामेंटल प्रोफेशन जो है वो है IT इंडस्ट्री में काम करते हैं
2: जी। हाँ,
3: समाज सेवा की बात जब हुई तो हमारी शुरुआत हुई थी 1992 में
2: जी।
3: एंड एट दैट टाइम जो शुरू में अलोंग विद माय वाइफ डॉक्टर सरयू राव वो हम लोग तेलुगु एसोसिएशन में काम करना शुरू करे
2: जी।
3: तेलुगु एसोसिएशन में काम करने के बाद 2 साल में पहला प्रेसिडेंट रहा वहाँ पर, फिर उसके बाद मौका मिला एक इंडियन अम्ब्रेला बॉडी शुरू करने का
2: जी।
3: वो हमने शुरू किया था मार्च 1994 में। पहले 2 साल आई वॉज द प्रेसिडेंट देर, फिर उसके बाद 10 साल आई वॉज अ पब्लिक ऑफिसर, फिर उसके बाद 4-5 साल थोड़ा आराम किया, फिर समाज ने कहा नहीं भैया आप आराम नहीं कर सकते हो, आप वापस आ जाओ कम्युनिटी में। सो एट दैट टाइम वी हैड टू क्रिएट काउंसिल ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियंस 2010 में। वो 4-5 साल चलाने के बाद 2015 में हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चांस मिला when I was talking to a member of the parliament,
2: जी.
3: they wanted to really help the Indian community.
2: हाँ.
3: Then हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं सोच समझ के हमने कहा चलो ठीक है we want one location, एक जगह ऐसी हो जो कोई भी अपना भारतवासी जो हो
2: जी.
3: I'm an Indian, I need support.
2: ये
3: one point stop.
2: बिल्कुल.
3: तो विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग हमें प्रेरणा मिली चलो शुरू तो करते हैं ऐसा कोई सेंटर फिजिकल सेंटर था नहीं सिडनी में तो था नहीं मेरे ख्याल
2: बिल्कुल नहीं था, था।
3: हाँ जी फिर हमने गवर्नमेंट का थोड़ा ग्रांट से ये हमने इसको शुरू किया मार्च 2015 में
2: राइट
3: तब से अभी 11 साल निकल गए
2: और आपकी जितनी सेवाएं बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि आपने मुझे लगता है कि पहले तो आपने एक बड़ा ही जो हेडिंग था माइग्रेंट सेटलमेंट तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं तो इससे आपने शुरू किया था तो उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं माइग्रेंट सेटलमेंट में
3: देखिए सबसे पहले उस वक्त दिमाग में यह आया कि हम लोगों ने काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं बॉलीवुड सेंटर्ड हैं दिवाली हुआ होली हुआ कल्चरल प्रोग्राम्स वो तो बहुत ज़रूरी हैं वो तो चल
2: हाँ,
3: रहे थे
2: हाँ,
3: काफ़ी लोग कर रहे थे
2: बिल्कुल कर रहे
3: हैं लेकिन डे टू डे ग्रास रूट लेवल सपोर्ट जिसको कहते हैं उस पर जब इंसान यहाँ सिडनी आता है ही डज नॉट नो कहाँ जाए क्या करें किससे बात करें तो इसलिए जैसे ही लोग आते हैं द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आई थॉट शुड बी अ सेंटर विच वी कॉल्ड इट फॉर्चुनेटली वी गॉट दैट नेम इंडियन सपोर्ट सेंटर तो जब माइग्रेंट आते हैं उनको बेसिक थिंग्स कहाँ सेटल होना है रियल एस्टेट वाले कौन कौन है जो हेल्प कर सकते हैं बच्चों का स्कूल्स कहाँ पर है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन
2: बिल्कुल जनरल के थ्रू भी मिलती है हाई कमिश्नर के थ्रू भी मिलती है
3: जरूर मिलती हैं जी लेकिन दैट देयर ऑल बिग ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो वहां पर भी मुश्किल हो जाता है फोन करके देखिए कितना इंतजार करना पड़ता है अल्टीमेटली मिल जाता है वहां से भी लेकिन पर्सनलाइज्ड योर ओन लैंग्वेज बेस्ड आप जो हेल्प कर सकते हैं बच्चों का स्कूल्स कहाँ पर है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन
2: बिल्कुल
3: उसाना
2: तो सुबह जी मान लीजिए मैं आती हूँ आज एज ए इमिग्रेंट में मेरा यहाँ कोई भी नहीं है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं
3: इट्स वेरी सिंपल अभी इंडियंस काफ़ी सारे वी आर मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया हम लोगों का एक ब्रांड इक्विटी हो गया है तो आप सिर्फ गूगल में जाके इंडियन सपोर्ट डाल दीजिए
2: जी
3: इंडियन सपोर्ट
2: राइट
3: फोन मिल जाएगा
2: हाँ हाँ
3: फोन नंबर मेरा फोन भी वहां पर लिखा हुआ है तो वो लोग बात करने से स्टेडियम कहते हैं भाई अगर मुझे मिलना हम लोगों का एक ब्रांड इक्विटी हो गया है
2: हाँ हाँ
3: तो आप सिर्फ गूगल में जाके इंडियन सपोर्ट डाल दीजिए
2: जी
3: इंडियन सपोर्ट
2: राइट
3: लोग हैं वो भी वहां पर आपको मिलेंगे जाते ही आपको आपके साथ बातचीत करके आपको जानकारी देंगे
1: अच्छा सुब्बा राव जी
3: जी
1: ऐसा है कि हम थोड़ा सा आप बहुत दिनों के बाद हमारे कार्यक्रम में आए हैं तो हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे आप बताइए भारत में आप कहाँ से हैं
3: ओके भारत में मेरा जन्म हुआ था ए प्लेस कॉल्ड गोलनापल्ली इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट विजयवाड़ा के पास
1: अच्छा अच्छा अच्छा
3: फिर व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड फिर हम लोग फादर आर्मी में थे तो हम लोग दिल्ली चले गए
1: अच्छा
3: दिल्ली में हमने पढ़ाई करी थी एक आंध्रा स्कूल करके तिलक ब्रिज के पास वहाँ पढ़ाई करके फिर आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली
1: ओके
3: दिल्ली

0: कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां करने के बाद फिर हम बंबई चले गए टू वर्क विद एटॉमिक एनर्जी.
1: अच्छा.
0: एंड दैट्स हाउ माय प्रोफेशन स्टार्टेड.
2: तो इसीलिए आपकी हिंदी इतनी अच्छी है.
1: हाँ, इतनी अच्छी है. आप सब जगह रहे हैं. तो ऐसा करते हैं शैलजा जी, हम थोड़ा सा इसमें आज का जो हमारा थीम है फादर से वाला, उसका इन्वॉल्व करते हुए हम सुब्बा राव जी से पूछते हैं, आपको अपने पापा की कैसे याद है, और एक कुछ छोटी सी घटना बताइए.
0: यू टच माई हार्ट. माई फादर, हम मेरे पापा जो हैं वो इंडियन आर्मी में थे. एंड इन वन ऑफ हिज पोस्टिंग्स इन 1959 उनका पोस्टिंग हुआ था दिल्ली में. तो इसलिए उस वक्त हम सब लोग गांव में जो थे
2: जी.
0: हम सब लोग उनके साथ दिल्ली चले गए.
1: अच्छा.
0: एंड ही इज़ ए वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. आर्मी में ही सर्व द आर्मी इन कश्मीर, काफ़ी साल वहां पर
2: जी. हाँ.
0: कश्मीर उधमपुर जैसे जगह पे इन्होंने काम किया. फिर ही लव्ड हिज चिल्ड्रन सो मच. जैसे हम दिल्ली पहुंच गए, एक हमारा एजुकेशन. एंड ही वॉज सो पैशनेट अबाउट एवरी डे. घर में हम लोगों को उस जमाने में
2: जी.
0: एक ग्रामर बुक होता था कॉल्ड रेनन मार्टिन. पता नहीं आप लोग शायद जानते होंगे. रेनन मार्टिन, आगे से पीछे आगे से पीछे, हर रोज एक घंटे का
1: ड्रिल. कितने भाई बहन थे आप?
0: हम लोग तीन भाई हैं. मेरा एक बड़ा भाई है.
1: अच्छा.
0: इंडिया में, वो भी अभी आर्मी से रिटायर हो गए हैं. और एक मेरा छोटा भाई है, वो है अमेरिका सैन डिएगो में. हम बीच के हैं.
1: एक्चुअली आशिमा जी इससे रिलेट कर सकती हैं कि उनके पापा भी,
3: मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में थे, एएमसी में, आर्मी मेडिकल
0: कोर में.
2: तो आपका भी वही डिसिप्लिन था.
0: डिसिप्लिन बहुत सिखाया उन्होंने.
1: शैलजा जी, आपके पास एक सुंदर सी कविता थी, वो सुना दीजिए, फिर उसके बाद एक सुंदर सा गीत सुनाएंगे और अपने बातचीत आगे बढ़ाएंगे.
2: तो श्रोताओं, आपको फादर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं. और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाऊंगी. मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये इन्होंने लिखी है, कवि ओम व्यास जी ने, लेकिन मुझको बहुत ही अच्छी लगी. पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है. पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है. पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है. छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान. आप सोचिए कि छोटे चार साल का बच्चा है, अपने पिताजी को देखता है कि ये सबसे बड़ी मूर्ति है संसार में. पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है. पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है. पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है. अप्रदर्शित, दिखाते नहीं है वो, लेकिन माँ तो दिखा देती हैं, लेकिन पिता नहीं दिखा पाते हैं. पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार हैं. पिता तो बच्चों का इंतज़ार हैं. पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं. पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं. पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं.
0: क्या कहा?
2: पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं. पिता से परिवार में प्रतिपल राग है. पिता से प्रति परिवार में प्रतिपल राग है. पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है.
1: वाँ
2: पिता वाँ से ही माँ की बिंदी और सुहाग है. पिता है रोटी, कपड़ा, मकान है. पिता छोटे से परिंदे का आसमान है.
1: बहुत सुंदर शैलजा जी, बहुत सुंदर. और इसी के साथ साथ हम एक गीत सुन लेते हैं.
2: बिल्कुल.

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: Yeh tha hamari sponsor Curry Master ka sandesh.
2: Achha, aapse ek question puchna jo Indian Support Center aap chala rahe hain, wo kaise aap vyavasthit karte hain, kaise staff employ karte hain, kya volunteers kaise laate hain?
3: Okay, ye jo hai, people supporting, this of course is a big challenge. To hame wahan par kya hota hai, आजकल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वहाँ से काफ़ी लोग इंटर्नशिप यानी कि ट्रेनिंग यानी कि जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए आते हैं
4: जी।
3: वो दे रही है उनके लिए हम लोग उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए ये हमारे एक्टिविटीज़ में उनको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देके काम कराते हैं। और दूसरी बात यह है कि देर लॉट ऑफ पीपल हु आर whose husbands are gainfully employed, उनके wives जो हैं they are highly educated, highly talented, और वो लोग जो हैं देखते हैं कुछ काम volunteership में मिल जाए या कुछ real job मिल जाए, paid job, तो वो लोग भी आके they knock at our doors, फिर हम लोग उनसे बैठ के बातचीत करके देखते हैं कुछ लोग they are happy to be volunteering 2 hours, 4 hours, 6 hours और 2 days in a week and things like that. और कुछ लोग जो हैं इनको मिनिमम वेज पे हम रखते हैं, हम लोग कॉरपोरेट लेवल पे वेजेस तो दे नहीं सकते हैं, बट मिनिमम वेज लेवल पर भी कुछ लोग जो एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पास टैलेंट है, हम उनको वहाँ पर रख के ये जो जितने प्रोग्राम्स यहाँ पर आज आपसे आपको लिख के दिया हमने उस पर हम लोग उनको यूज करते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट द राइट कैंडिडेट, बट फिर भी हम लोग कोशिश करके लोगों को एंगेज करके, खास करके मैं उनको काफ़ी समय बिता के ट्रेनिंग देता हूँ।
4: आपकी सुबह जी, आपकी बहुत बड़ी संस्था है और मुझे लगता है कि इसमें कितने स्टाफ इन्वॉल्व होंगे, तो ऑल टुगेदर वॉलंटियर्स एंड पेड स्टाफ कितने लोग इन्वॉल्व हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में?
3: तकरीबन ऑल टुगेदर देयर विल बी 16 पीपल।
4: 16 ओनली?
3: 16 लोग, हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर वेंटवर्थविल में हमारा ऑफिस है, इंडियन सपोर्ट सेंटर का, वहाँ पर है। बाकी सारा काम वॉलंटियर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हम खुद भी कर लेते हैं, थोड़ा डब्बों में, थोड़ा बाकी जो संस्थाएं जो हैं, लिटिल इंडिया, NSW, हैरिस पार्क, और अभी जो नया जो हमने शुरू किया है मल्टी कल्चरल कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर, वो अभी शुरू हो रहा है, वहाँ पर भी हमने अभी हायर किया हुआ है। तो 16 लोगों से काफ़ी काम चल जाता है, फिर भी हम लोग वी आर ऑन द लुकआउट फॉर मोर पीपल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एरियाज लाइक NDIS।
4: राइट, तो 16 पीपल दे आर फुल टाइम?
3: हाँ,
4: आपका ऑफिस कहाँ है? एक तो मैंने पढ़ा था गिल्बा स्ट्रीट है, और दूसरा वेंटवर्थविल है, फिर तीसरा आप कह रहे हैं कि हैरिस पार्क में भी है।
3: अच्छा, गिल्बा स्ट्रीट हमने वहाँ पर शुरुआत करी थी 2015 में, लेकिन 2018 में वी मूव टू वेंटवर्थविल, 2 Lane Street पे।
4: तो वो तो कम्युनिटी सेंटर है।
3: हाँ, वो कम्युनिटी सेंटर में नाइसली देयर छोटा सा 2 bedroom का वो है, उन लोगों ने, काउंसिल वालों ने हमें दिया है ऑन ए पेड बेसिस ऑफ कोर्स। तो हम लोग वहाँ पर 2018 से ये संस्था।
4: तो कितना बड़ा है वो ऑफिस वहाँ का जो आपको मिला है
3: उसमें? इट्स अबाउट 70 square meters डिवाइडेड इनटू 3 नॉर्मल रूम्स एंड 1 small room, बट दैट इज गुड एनफ, बट वी डेफिनेटली नीड मच लार्जर स्पेस, लेकिन
4: Yes.
3: हम गुजारा कर रहे हैं वहाँ पर। समटाइम्स ऑन अ नॉर्मल डेज आपको वहाँ पर अंदर जाने की जगह नहीं मिल सकती है व्हेन स्टूडेंट्स
4: आर देयर।
3: फिर हमने थोड़ा सा एक्सपेंशन के उसमें एक नई जगह ली है, उदया के ऊपर एक जगह, एक और ऑफिस लिया हुआ है, वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट करके चला रहे हैं।
4: क्योंकि आपकी सर्विसेज के लिए काफ़ी बड़ी स्पेस होनी चाहिए।
3: हाँ जी।
4: तो उससे आपको गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं मिल सकती है या काउंसिल से?
3: Government says it's very hard to get space or to get wages for people. Government grants program ke direction mein, wo log generally program wo jo run karne ke liye, they provide a bit of funding, but they don't provide funding for employing people, especially that has been our experience. तो कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं अभी कुछ मिल जाता है
4: तो इंडियन गवर्नमेंट.
1: मैं पूछना था तो क्या आप कभी कैसे फंडिंग किट्स कैसे होती है, 16 लोगों को एम्प्लॉय करके आप करते हैं तो फंडिंग अगर कभी कभी अपनी पॉकेट से भी देना पड़ता है क्या?
3: देखिए ऐसा है, 16 लोग जो है उसमें काफ़ी सारे वॉलंटियर्स लोग हैं. अच्छा. हमारा अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर डब्बो देन ब्लैक टाउन ऑफिस एंड लिटिल इंडिया NSW इन सब मिला के तकरीबन हमारा 12,000 का डॉलर का पर मंथ का एक्सपेंडिचर है. सो दैट्स अ फेयर बिट ऑफ मनी.
4: यस.
3: एंड तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट एवरीथिंग गोज थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग. हम लोग गवर्नमेंट के फंडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्टेन प्रोग्राम बेस्ड काइंड ऑफ इवेंट्स. हाउएवर देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर वी डिलीवर प्रोग्राम्स थ्रू थ्रू अदर ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू हुम वी गेट ए लिटिल बिट ऑफ मनी. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा पूरा डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम जो है फॉर सीनियर्स फॉर वीमेन, वो प्रोग्राम जो है हमारे एक संस्था है कॉल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड गुड थिंग्स फाउंडेशन, उनके द्वारा वो हम प्रोग्राम चलाते हैं. फिर सिमिलरली एवरी वीकेंड हम लोग पब्लिक नोटरी सर्विसेज चलाते हैं 3:30 to 5:30 2 hours पब्लिक नोटरी. देन वे हम लोग वहाँ पर थोड़ा मोस्ट फेयर बिट ऑफ मनी नोटरीज को ऑब्वियसली देना पड़ता है, बाकी जो है हमारे एडमिन एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा वहाँ से पैसा.
1: कमाल है सुब्बाराव जी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 12,000 पर मंथ आपका एक्सपेंसेस हैं और इसका मतलब ये होगा 144,000 पर एनम आप इतना रेज कर लेते हैं. आपका मतलब ये है कि हम तो एक्चुअली हमारे दर्पण रेडियो का जो स्पॉन्सरशिप है उसके चलाते हैं और हैंड टू माउथ ही रहते हैं, लेकिन यह है कि हमें शायद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो आपका डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन हम आपको साधुवाद देते हैं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं. अच्छा, आपने कई संस्थाओं के नाम लिए, एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5 करके हमें बता दीजिए कौन कौन सी संस्थाएँ आप चला रहे हैं.
3: अच्छा, जो 2015 से जो हमने शुरू करी थी इंडियन सपोर्ट सेंटर इनकॉर्पोरेटेड, एंड उसके वो 10 साल अभी 12वां साल चल रहा है अभी. देन दूसरी संस्था जो है 2023 में हमने रीजनल डब्बों में चले गए. वो इसलिए भी गए थे कि वी आर टॉकिंग टू मल्टी कल्चरल NSW, वन ऑफ देयर प्रायोरिटीज इज रीजनल सेटलमेंट.
1: अच्छा,
3: तो वो रीजनल सेटलमेंट के चक्कर में उन लोगों ने दे गिव अस अ बिट ऑफ अ ग्रांट व्हिच वाज एनफ टू ट्रेन पीपल एंड मेक देम जॉब रेडी, फिर उसके बाद हम उनको डब्बो भेज सकते हैं बिकॉज डब्बो इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट. तो इस सिलसिले में हमने वहाँ जाके एक ऑफिस खोला हुआ है वहाँ पर.
1: Mm-hmm.
3: And वो चल रहा है अभी. We got our own fundamental issues of getting right people and all that. That is second organization. अच्छा, तीसरी organization जो है, कई बार क्या होता है कि when you got that kind of experience, people come to you for support. तो इस सिलसिले में Harris Park में Little India NSW करके, that is run by the president is Nitin Setia. तो वहाँ पर I am the public officer there. तो उन लोगों को हेल्प करते करते अभी एन एक्सेलेंट प्रोग्राम वी स्टार्टेड कॉल्ड फ्री शटल सर्विस.
4: राइट.
3: एंड ए फ्री शटल सर्विस जो है विथ पार्ट ऑफ इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ इट थ्रू स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम बिजनेसेस इन हैरिस पार्क. वी थैंक ऑल ऑफ देम. सो हम लोग दैट फ्री शटल विल टेक पीपल फ्रॉम पैरामेटा स्टेशन इन टू विक्रम स्ट्रीट, मेरियन स्ट्रीट एंड स्टेशन स्ट्रीट्स ऑफ हैरिस पार्क.
1: बहुत बढ़िया.
3: इमेजिन आप शॉपिंग करने जाते हैं, इधर वहाँ जाते हैं, राधे जाते हैं या पटेल ब्रदर्स जाते हैं, 5 किलो राइस 5 किलो आटा लेके कितनी दूर पैदल चल पाओगे अपने गाड़ी तक. तो उनके लिए ये बहुत ही व्हाट यू कॉल कन्वीनियंस है. तो अभी ये शुरू करके 2 हफ्ते हुए हैं एंड NSW गवर्नमेंट को भी हम हार्दिक सब थैंक्स कहते हैं. और तो मेरे ख्याल वो प्रोग्राम अच्छा जा रहा है. और उसके अलावा अभी इस पूरा साल हम लोग एक और मेजर प्रोग्राम थ्रू सपोर्ट फ्रॉम पैरामेटा काउंसिल नाइट टाइम इकोनॉमी प्रोग्राम्स करने वाले हैं. एवरी मंथ 3-4 रेस्टोरेंट्स को लेके उनको खूब प्रमोट करके थोड़ा वहाँ पर बॉलीवुड सिंगिंग डांस ये प्रोग्राम्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग अभी. दैट इज थर्ड आइटम. द फोर्थ वन, देखिए व्हेन यू रन इंडियन सपोर्ट सेंटर perceptions sometimes can be a bit problematic.
4: Yes.
3: The general public out there tend to think ye Indian support center khas karke Indians ke liye hi hai. To usse baki log kafi log nahi aate hain. And also when you approach the government they say, oh, Indians may not require support.
4: Yes.
3: Indians are well to do, hard working, intelligent people. Aap logon ko zyada government ki madad nahi chahiye. To isliye to circumvent that and try to deliver the services to wider cross section, hum logon ne we now started multicultural communities.
4: Yes.
3: Multicultural community support center in Blacktown. Chahe koi bhi migrant, South America, South Africa, Middle East, South Asian countries, ASEAN countries, jahan se bhi jo bhi aaye hain, wo wahan par aake madad le sakte hain. Khaas karke us program mein hum log we are just conceptualizing employment pathway as the major program.
4: Yes.
3: Doesn't matter whether you are from India or anywhere in the world, where there are a lot of colleges where students pass out but they don't get jobs. तो हम लोग इस वक्त एम्प्लॉयमेंट पाथवे के रूप में उनको लाके ट्रेन करके इंडस्ट्री के साथ बात करके उनको प्लेसमेंट करने का मैसिव प्रोग्राम वी हैव अंडरटेकन एट मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सपोर्ट से. सो दे आर द 4 इंस्टीट्यूशंस वेयर माय टाइम.
1: बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा. तो इसी के साथ साथ हम एक गीत सुनाते हैं
3: जी.
1: फिर उसके बाद आपने इतनी अच्छी बात बताई, इतने लोगों को आप सिखाते हैं. तो कल टीचर्स डे था, उसके बारे में गीत के बाद हम वो वार्ता सुनेंगे, फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे.
4: शिक्षक दिवस,
1: शिक्षक दिवस.

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
3: सरिता सोनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो हमारे जीवन को दिशा देता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। आप सभी ने दोहा सुना होगा, संत कबीर दास जी का है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। श्रोताओं, 5 सितंबर हमारे लिए बहुत खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन हम भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं। उनके जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना या परीक्षा पास करवाना नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य है एक अच्छे इंसान का निर्माण करना। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन की सही दिशा भी दिखाता है। अगर हम भारत की बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी और सुंदर परंपरा है। आज समय बदल गया है। आज गुरुकुल की जगह स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और ऑनलाइन शिक्षा ने ले ली। हमारे पास किताबों के साथ साथ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली है और वो है, हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत जो हमेशा रहती है। हम सभी को जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें बताए कि सही रास्ता क्या है, हमारी गलतियों को समझाए, मुश्किल समय में हमारा हौसला भी बढ़ाए और हमें खुद का बेहतर रूप बनने के लिए प्रेरित करे। और अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता और हमारा परिवार होता है। हमारे माता पिता हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने व्यवहार से सिखाते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि माता पिता हमारे लाइफ लॉन्ग टीचर्स होते हैं। एक शिक्षक हमें विषय का ज्ञान दे सकता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक हमें जीवन को समझना भी सिखाता है। और यही भावना ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलती है। यहाँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स डे 3 सितंबर को मनाया जाता है, जिसके माध्यम से सभी एजुकेटर्स को सम्मान दिया जाता है, जो छोटे बच्चों की लर्निंग, डेवलपमेंट और वेलबींग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक एजुकेटर बच्चे को केवल लेटर्स या एक्टिविटी से ही सिखाता, वह बच्चे में कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, काइंडनेस और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने में भी मदद करता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, हम सभी किसी ना किसी के शिष्य हैं और शायद हम सभी किसी ना किसी के गुरु भी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत नमन और सभी शिक्षकों एवं एजुकेटर्स को मेरा दिल से धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे और हैप्पी एजुकेटर्स डे। और इन शब्दों के साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, आप सभी का दिन शुभ हो। सुनते रहिए रेडियो दर्पण। धन्यवाद श्रोताओं।
4: सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर वार्ता प्रस्तुत की है।
2: बहुत अच्छी बात है और हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है। तो आशिमा जी, आप कुछ पूछने वाली थी।
5: हाँ शुभा जी, आप बता रहे थे शटल सर्विसेज के बारे में, पैरामेटर टू हैरिस पार्क, तो उसमें कैसे कैसे मतलब टाइमिंग्स बताइए, जैसे सब श्रोताओं को मालूम पड़े और आपकी शटल सर्विसेज यूज़ कर पाए।
6: अच्छा जी, सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि हैरिस पार्क का मेन प्रॉब्लम है पार्किंग। मान लो आप इवनिंग जाना चाहते हैं फैमिली के साथ फाइन डाइनिंग के लिए कहीं कोई भी रेस्टोरेंट में, वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलता है। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं चलो घर जाते हैं वापस या कहीं और जाते हैं। तो इसलिए पीक टाइम जो है अब वीक का थर्सडे टू संडे होता है। तो हम लोगों ने बजट्स को ध्यान में रखते हुए थर्सडे टू संडे 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये शटल सर्विस जो है पैरामेटा स्टेशन से टू वेरियस स्ट्रीट्स जो है हैरिस पार्क के, वो शटल सर्विस चलता रहता है। तो ये हमने शुरू करी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रफली तकरीबन 25 मिनट से 30 मिनट्स का सर्विस टाइम है जहाँ भी आप लेते हैं ना बस को, तो 30 मिनट्स के बाद वहाँ पर वापस आ जाएगा।
4: तो इसका मतलब कि हर 25 से 30 मिनट में आपको गाड़ी मिलेगी वहाँ से।
6: हाँ, इस वक्त।
4: और दिन में नहीं मिलेगी 6 बजे से पहले?
6: दिन में हम लोगों ने अभी बजट के वजह से हमने डे टाइम हमने शुरू नहीं करी। वी आर फाइंडिंग थोड़ा सा बजट अगर मिल जाए तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, बट इस वक्त इट्स अ रिस्ट्रिक्शन टू रन ओनली फॉर थर्सडे टू संडे।
2: अच्छा, हो सके तो स्टॉप्स के बारे में बता दीजिए कहाँ पर
6: है। जी, इट्स पहले तो शुरू तो 10 वैलेंटाइन स्ट्रीट स्टेशन के बिल्कुल बगल में है, वहाँ पर पिकअप करेंगे। वहाँ पर पिकअप करके पार्क स्ट्रीट से लेके हैसल स्ट्रीट पे एक कार पार्क है, उसका नाम है इंटर पार्क कार पार्क। वहाँ पर भी लोग पार्क करते हैं वीकेंड्स में, तो सिर्फ आई थिंक दे चार्ज ओनली $4। तो वहाँ पर कार पार्क करने के बाद फिर वहाँ से लोगों को हम पिकअप करके विक्रम स्ट्रीट जहाँ मलबार गोल्ड डायमंड शॉप है वहाँ पर एक स्टॉप है, फिर सीधा विक्रम स्ट्रीट पे जाते जाते समवेयर नियर 88 आई थिंक विक्रम स्ट्रीट वहाँ पर एक स्टॉप होगा। फिर उसके बाद मेरियन स्ट्रीट है वहाँ पर लेफ्ट लेके हम लोग जो पटेल ब्रदर्स है वहाँ पर डेफिनेटली एक स्टॉप है, एंड फिर वहाँ घूम के वापस मेरियन स्ट्रीट से जाके हम लोग राधे पे जाके वहाँ पर एक और स्टॉप है, वहाँ पर रोक।
2: बहुत बढ़िया।
6: हाँ, वहाँ रोक के फिर बाद में सीधा वहाँ से जाके पार्क स्ट्रीट फिर बैक टू द रेलवे स्टेशन।
2: अच्छा, तो ये एक पहले तो ये बताइए कि $4 वाला जो पार्किंग है वो कहाँ पर है?
6: वो तो हैसल स्ट्रीट और विक्रम स्ट्रीट का क्रॉसिंग है।
2: अच्छा,
6: टी जंक्शन।
2: अच्छा,
6: छोटा सा राउंड अबाउट है।
2: अच्छा,
6: बिल्कुल वहीं पर।
2: अच्छा,
6: इट्स द बिगिनिंग ऑफ हैरिस, बिगिनिंग ऑफ विक्रम स्ट्रीट।
2: अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा,
6: वो हैसल स्ट्रीट के बिल्कुल इंटरसेक्शन पे।
2: अच्छा,
4: दिस इज द फ्री सर्विस।
6: दिस इज बाय नेम इटसेल्फ वी आर सेइंग इज अ फ्री शटल, नोबडी हैज टू पे एनीथिंग। एंड हाँ जी,
2: तो इसे सर्च करने के लिए क्या कर रहे हैं इंटरनेट पर?
6: हाँ, आप लिटिल इंडिया NSW फ्री शटल करके देख लीजिए, अगर आता है तो हम लोग वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रमोशन इन फेसबुक, बट फ्री शटल हैरिस पार्क डालने से आपको काफ़ी जानकारी मिलना चाहिए।
2: बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इतना कर रहे हैं मतलब गजब की बात है, आप कमाल है।
6: थैंक यू।
4: लिटिल इंडिया में और आपके क्या प्लान्स हैं उसको डेवलप करने के लिए?
6: देखिए, काउंसिल के साथ काफ़ी बातें होती रहती हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और डॉक्टर एंड्रू चार्ल्टन जी जो है फेडरल MP, उनसे भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि, एंड ऑल्सो वहाँ का लोकल MP जो है डोना डेविस जी, तो वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो काउंसिल विद फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट, वो लोग उनके प्लान में है काफ़ी करने का, लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं स्ट्रीट लेवल एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। अभी पूरा साल हम लोग एवरी मेरे ख्याल 6 to 8 weeks हम लोग एक नाइट इकोनॉमी प्रोग्राम कर रहे हैं।
4: अच्छा,
6: काउंसिल इज सपोर्टिंग अस इन दैट। नाइट इकोनॉमी में ये होगा कि विल पिक अप दिस मंथ 4-5 रेस्टोरेंट्स को लेके उनको खूब प्रमोट करके एक बॉलीवुड एंड डांस ग्रुप एंड सिंगर वो रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट उनको ले जाके, एंड वी वांट टू अट्रैक्ट लॉट मोर विजिटर्स टू हैरिस पार्क। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट मोर फुटफॉल इन टू हैरिस पार्क। ये पूरा साल ये चलेगा। फिर उसके बाद जो है एक और विथ मल्टीकल्चरल NSW से छोटा सा स्ट्रीट फेस्टिवल का भी कुछ प्रोग्राम होगा। इसके अलावा भी देर आर अदर थिंग्स लाइक वी हैव जस्ट विथ अ स्मॉल ग्रांट वी आर डूइंग डिजिटल एजुकेशन फॉर सीनियर्स। तो काफ़ी सारे इंडियंस जो है सीनियर्स वहाँ पर आते रहते हैं, स्पेशली आप वीकेंड जाओ तो आगे जाके एक पार्क भी है वहाँ पर भी, वहाँ पर भी तो हनुमान 40 सुंदरकांड वगैरह बहुत होता रहता है वहाँ पर, तो उन सबको बुला के थोड़ा कंप्यूटर्स का सिखा के, स्कैम्स के बारे में बता के, थोड़ा एआई फॉर डे टू डे लाइफ वो थोड़ा बता के, ये सारे चीज़ों में हम उनको जानकारी देने का प्लान है, और इसके लिए थोड़ा छोटा ग्रांट भी अप्रूव हो चुका है, वो हम करने वाले हैं। दिस प्रॉबेबली हम लोग वहाँ पर हैरिस पार्क कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर है, उनसे बात करके वहाँ करने जा रहे हैं।
2: अच्छा, आपने एआई का नाम लिया तो मेरे जहन में एक सवाल आया।
6: जी जी,
2: कि आप की एआई कंपनी है,
6: आईटी
2: कंपनी,
6: जी जी जी,
2: आईटी कंपनी पर एआई का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी कंपनी पर?
6: देखिए, हमारे लिए तो मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो काम मैं पहले 5 घंटे 6 घंटे में लेता था करने के लिए, अभी 15 मिनट आधा घंटे मेरा काम हो जाता है। पहले आई नीड टू डिपेंड ऑन सम अदर पर्सन, वो कब आएगा क्या करेगा उस पर डिपेंड करता था। अभी मैं सीधा आई यूज़ ओपन चैट GPT, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ एनी AI टूल, वो यूज़ करके मैं सीधा सीधा जो मैं करना चाहता हूँ, कोई टेंडर सबमिशन हो, किसी को चिट्ठी लिखना हो, पूरा ड्राफ्ट भी पूरा बुलेट पॉइंट्स, 4-5 बुलेट पॉइंट डाल देता हूँ, इतना अच्छी तरह से मेरे को वहाँ ड्राफ्ट मिल जाता है, फिर उसको मैं मॉडिफाई करके आगे ले जाता हूँ।
2: अच्छा, ये बताइए कि आपके इसके पहले 3-4 साल पहले कितने एम्प्लॉय थे और अब कितने हो गए? आपने कुछ को निकाला क्या?
6: देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, देयर आर टू थिंग्स एम्प्लॉयज को रखना, एक तो यह है कि बिजनेस अच्छा काफ़ी जाना चाहिए आगे, तो फिर एम्प्लॉयज को भी रख सकते हो। लेकिन इट्स वेरी इजी टू से 1 in 3 or 1 in 4 रिडक्शन जरूर होगा, जरूर हो जाएगा, हो गया होगा ऑलरेडी। तो इसलिए मैं समझता हूँ पीपल हैव टू रीट्रेन देमसेल्व इन AI, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ AI, एंड अनलेस यू डू दैट, आई एम फीलिंग क्वाइट ए नंबर ऑफ पीपल विल बी आउट ऑफ देयर मेन जॉब्स।
2: ऑलरेडी काफी निकल
6: रहे हैं, चल रहा है अभी। आप इंटरनेट में जाके देखिए, यस, लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हैपनिंग। एंड अभी एक और अभी मान लीजिए क्लाउड को देखिए, क्लाउड AI सॉफ्टवेयर, तो सीधा कोड जो है, आप और हम भी बैठ के, थोड़ा जानकारी हो आप और हम भी बैठ के कोड लिख सकते हैं।
2: बिल्कुल।
6: तो इतना आसान हो गया है उससे। लेकिन एट एंड ऑफ द डे जो भी AI आपको बना के देगा, अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन हैज टू वेट इट, ह्यूमन ब्रेन हैज टू वेट इट, एंड देन यू कैन टेक इट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बना के देगा, अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन हैज टू वेट इट, human brain has to wet it and then you can take it for implementation।
2: yes,
6: aankh band karke nahi।